जाजा जा कुमती तभागी घर जा मेरा अगाड़ी न बस कि जोगी भई जा मर दिन तलाजु मरानी त गई माफिका मागीले झुझुकेर कहाँ मैले बिराए भनी कि मेरा दुई बाहुमा त ठोकी दे जन्म फ्लाटेर अनि त करिन दुई त धनको भतुवा।

काम कई चाकर जई भैर रहनम इसरे लाल देवता सरी मन्ने मा तुरपी तुलाई बुझी को शत्रु चोरी को गरी ये काला उपाय तक सजलो कुनो आज्ञा निगरी मेरो चित्त बजाई भक्त नोज के ले यंत्र तरी

फेसबुक में गाइस यदि आपने भी बिजनेस टाइप में नॉन प्रॉफिट या कुछ करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इंडिविजुअल में कैसे चीज

0: थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: हो ईश्वरी कहाँ मुसाफिर
1: हो राम लाल सराया कोठा लाई लाई ना का कोमा

0: मेरो निर्माता हो
1: मेरो त देवकी श्राकुटी हो
2: आकाश मैलो कालो बादल

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

हाईटेक नर्सरी में उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी विभिन्न बिरुवा को भरपर्दो गंतव्य कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म। यहां लोड सल्ला, टिमूर, कागती, सुन्तला, जापानीज हलुआ बेद, जापानीज नस्पति, रेड किबी, ग्रीन किबी, मेकाडेमिया लगायत विभिन्न फलफूल तथा जड़ीबुटी जन्य बिरुवा उपलब्ध छन्। सीजन अनुसार का बिरुवा खरीद गर्न आज सम्पर्क गर्नुहोस्। संस्थागत खरीद में विशेष छूट।

नमस्कार रेडियो शैलव सामुदायिक एफएम बैनवी थोप्लो 7 MHz म पति प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुन 23 तारीख आषाढ 9 गते मंगलबार 9 तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरी भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, हरि हरि हरि हरि सदाई भारी भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुंदर वृंदावन छोडेर नजाऊ होइ रुन्छन मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुंदर वृंदावन

पाए मुरली रन को पीरा पानी हरम तो यो मन को हे कृष्ण सुन्न पाए मुरली रन को पीरा पानी